स्वर्गवासी माता करतार कर स्वरूप सिंह, स्वर्गवासी माता देवाकर प्रीतम सिंह जी बंगई, स्वर्गवासी नारायण सिंह उत्तम सिंह जी बेदी, स्वर्गवासी देवाबाई नारायण सिंह जी बेदी परिवार वालों माया द्रवई, स्वर्गवासी जगजीत कर मन्ना सिंह जी बंगई, स्वर्गवासी मन्ना सिंह तेजा सिंह बंगई, स्वर्गवासी जीवन सिंह मोहन सिंह दफेदार, स्वर्ग

संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खड़ औ भौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुने आयो हिंडोल पंच नार संग

मोदी और गुजरी संग दीपक के थाप, कालंका कुंतल और रामा, कमल कुसम चंपक के नामा, गौरा और कांदरा कल्याणा, अष्टपुत्र दीपक

प्यास हर हर नाम मलै त्रिपता सहमल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखिया लखास।

सल पत्थर मह जंत उपाई ताका रजक आ गए कर धरिया। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो।

तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करै हर पूजा जी तब तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पड़ै बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया।

सर जो सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई आसा महला चौथा।

विच्छित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सेख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सबरन को आज संघरिय।

ते पाऊं सेवक सेख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय हू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस दुज ज्यों करिय हो रक्षा राख ले हो महे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा पपधरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रगासा सकल काल का किया तमासा

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह बद कियो, घाट घाट के

हो जोया की एक बार चौपाई को कह चौपाई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस पुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मा

जी जी तुमरे ध्यान को नित उड़ ध्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय, सब सिखण को सुख दय जह तह भय सहाय दोहरा। ठीकर फोर दिलीस सिर प्रपुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हों आन दोहरा। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, हाँ सब जग भयो। जय जय जय सुरलोक। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैया छतरी।

दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद की चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख तिहार चित मैं जुद बिचारे।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत। सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छह सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरंग। श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

योग जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का जुआ। एक ना हुकुम समाल एक ना हुकुम करे विनाश एक ना पाने कर

0: बोलू चरका चक चक तलवार ले बहुत अनंत
1: लट मदनी अनगा पंके पोजाले अनसार सुए चढ़ पवाए जंत नान पोंदिया अगनत नांत बंधन बंद पवाए सोए पै कृत चे सब कोए नचन चासे चले सिरो उड़ना जाए सिद्ध ना हो नचन कुदल मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ना उतरन कर।

0: पहला कुल राजा कुल प्रजा कुल सब संसार कुल मंडप कुल माड़ी कुल बसनहार कुल सेना कुल रूपा कुल पनहार कुल काया कुल कपड़ कुल रूप पार कुल मियाँ कुल विवेखा भोयखार कुल कुड़ेन हलगा विसरा करतार कृष्णाल किचे दोस्ती सब चलनहार कुड़ मिठा कुड़ माख्य कुड़ो बपुर नानक कान बेंती तुलवाज कुड़ पुर महला बहला
1: सचता प्रजाने जारी दे सचा होए कुड़ की मुलत्रे तन करे अच्छा तो होए सचता प्रजाने जा सच तरे पिया नाओ सुड़ मन रह सियता पाए मोग दुवार सचता प्रजाने जा जुड़ जाने जियो तरत काया साज के विच दे करता बियो सचता पर जाने जा सिख सचिले दया जाने जी की किच पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास सद

नानक में सरे काए कर करवा जो जो सरटाई है ज्ञान बुझता है सदगुरु संतों का त्रमे ग्रथवा त्रय त्रज दे का जोर ग्रथवा द्वापर पे का सत ग्रथवा।